0: जपत जा सातो आका सातो पता बिथरु अदृष्ट जय कर्म जार उस्तत संपूर्ण
1: स्वाक महला पहला पे पांडे साजे ना पे पूर्ण दे एक निदत समय एक छुलेरान चढ़ा कने हाले पैसे

सर्प कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दा संदा तुद आगे बिनवता सरो पवन गुरु पाणी पिता माता तत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सहज रत।

आहार हरिय, छेद हरिय, भेद हरिय, जंत्र हरिय, मंत्र हरि, सो तेज हरिय, तंत्र हरि, अजात हरिय, पात हरिय, मित्र हरिय, मात हरिय, रोग हरिय, शोक हरिय, भरम हरि।

वेद वेद योग देव नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बांदर करत होर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरज दे तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेद चारि सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल हास के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमृत समूहन के होए होए बितय है। मोन दी मदार के ते असुनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बस भय है। वीरे और पिकांबर के ते गण न परत एत भूम ही ते होय के फिर भूम ही मिलय है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तो बची कपट भेष भूषती अनेक दानी वावत है। शीस को कहा भयो मल्ल जो पे काढ़ते अनेक दंड सो तो डंडो दस टांग अथ तीस को कहा भयो रुक जो पे डार्यो रहो उर्ध मुख मन तेना मुंड ने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पट गत जाके कान में खजूरा धस मुंड छट गत मित्र पुत्र हूं के शोक सो आंख को चरैया फूल फूल को फुचैया सदा बन को ब्रह्मैया और दूसरो न बोक सो कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को फुचैया बोल पूज लीज जोक सो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेंट पर लोक सो। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठाडे सदा बन में रहत फ्रिच फूक फूक पाव भूम श्रावक धरत है। वाहन अनेक जुग एक ठोर बात करे काग और जीत देश देश विचरत है। ग्यार के विहीन महादान में न हुजलिन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक सोंगी कहू जो किया बरागी बने कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पर लगावे बारी कहूँ दंड धारी हो के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकार पर शीत काल कुंचर ओगा दहा अनेक दा पुकार ही कहा भय जो पे कल वत्र लियो कांसी बीज चीर चीर चोर टाक ठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कस ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेक तरन घायल सहत है। जाप के किए तो जो पे पायत अजाप देव बूधना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बासी के उपजंग न तरत है। कहु भयो मुंडे या सन्यासी कहु जो कि भयो कहु ब्रह्मचारी कहु जाति अनुमान बो हिंदू तुरक को राम सी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो करता करीम सुई रास करहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही की सेव सब ही को गुरु।

देव जय गंधर्व तुरक हिंदू न्यार न्यार देशन के भेष को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आप को रलाओ है। अल्लाह फेक से पुरान ओ कुरान ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग दे कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर दे अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। केते गछ मछ केते उन को करत भछ केते अछ वछ हो सपच उड़ जाहेंगे। केते नव बीच अछ पछ को करेंगे भछ केते प्रतच हो पत्ताए खाए जाहेंगे। जल कहाँ धल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तीज लीन ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कुकत फिरत केत रोवत मरत केत जल में डुबत केत आग में जरत है। केत गंगवासी केत मदीना मक्का निवासी केतक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत केत भूम में गड़त केत सुआ पे चढ़त केत दुख को भरत है। गैन में उड़त केत जल में रहत केत ज्ञान के बहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चौचार बूज हारे पाहर चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मडली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी।

मंग न जन्मंग न जातंग न मित्रंग न सत्रंग न पितरंग न मातंग न नेहंग न गेहंग न कामंग न धामंग न पुत्रंग न वितरंग न सतरंग न भामंग लेखंग भेखंग जोनी स्वरूपंग सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध रूपंग नहीं जान जाई गछु रूप रेखं कहा बासदा को फिर कौन वे खं कहा नामता को कहा कह कहा वे कहा गह बखानो कहे मैं न आव न रोगंग न शोकंग न मोहंग न मातंग न कर्मंग न भर्मंग न जन्मंग न जातंग अद्वेखंग।

प्रतापाद अच्छे विभूते न जन्मंग न मरनंग न बरनंग न व्यादय अघंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग स नेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे ब्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्र सभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग फेखंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जोनि अक्षय अद्वय जोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग वैरविखादंग अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग प्रपालंग न दत्तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध विर्धंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तंग प्रभाद अनुक्तंग प्रतापे युक्तंग अक्षयाद विक्ते यथापे विभुक्तंग अक्षयाद अक्षय स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न शोकंग न साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग ताकंग न जातंग न मातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न भर्मंग न सर्मंग न साके न बर्मंग न चर्मंग न कर्मंग न बाके न सत्रंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म थामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे

देह गृह कहूँ देह दुख कहूँ औखति रोग के शोक सुख कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जक्ष गंधर्व के नर कहानी कहूँ राजसी सादकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के ऋष पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ वद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र वाणी कहूँ छुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्धावस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग करेहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरितं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या

कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज व्याख्या कहूँ वेदरीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा बछरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या हूतं प्रभा हो कहूँ छैल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राज साजंग थे राजाधिकारी नमो नाथ पूरे।

जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्राद नहीं मित्र मात, जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं ब्योत बान। जय जात पात नहीं शत्रु मित्र, जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख। जय गरम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम धाम नहीं वर्ग ब्याद, जय रोग शोक नहीं सत्र साध। जय त्रास वास नहीं देह नाश, जय आद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत। जय काल व्याल कट्यो न अंग, अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कतेब। जय अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अक्षय अतोल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कल्प जोग साधत दुरंत। तन सीत घाम बरखा सहंत, कई कल्प एक आसन बितंत, कई जतन जोग विद्या विचार साधंत, तत् पावत न पार। कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमंत, कई ऊर्ध मध्य पावक झुलंत, कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद, कई कूक काव कथत कतेब। कई अगन होद्र कई पावन हार, कई कर्त कूट मृत को हार, कई कर्त साक पै पत्र भच्छ, नहीं तदब देव हो बत प्रत्यक्ष। कई गीत गान गंधर्व रीत, कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत, कहूँ वेद रीत जगे याद करम, कहूँ अगन होद्र कहूँ तीर्थ धर्म। कई देश देश भाखा रटंत, कई देश देश विद्या पढ़ंत, कई कर्त भांत भांतन विचार, नहीं नैकता सपायतन पार। कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम, कई अग्न होत्र कई देव करम, कई कर्त वीर विद्या विचार, नहीं तदबता सपायतन पार। कहूँ राजरीत कहूँ जोग धर्म, कई सिमृत शास्त्रत उचरत सो करम, न्योली याद करम, कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मख को बखान। कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार, कहूँ जोग रीत कहूँ बिरध चार, कहूँ करत जक्ष गंधर्व गान, कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान। कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत, कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत, कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार, कई भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास, कई भ्रमत देश देश अनुदास, कई जल निवास कई अगन ताप, कई जपत उर्ध लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पं प्रजंत, नहीं तदब तास पायतन अंत, कई करत कोट विद्या विचार, नहीं तदब दिष्ट देखे मुरार। बिन भगत सकत नहीं भरत पान, बहु करत हो मर जग दान, बिन एक नाम एक चित्त लीन, फोकटो सर्व धर्माभिहीन।

न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जाच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साहु है न साह को कुमार है न देह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न

काल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न फूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैग है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अवेक है, बलिय रूप राग रंग है, न द्वैग है, न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिहन परण है, बेअंत है, अनंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम अभिज है, सदा छिज

है न रूप रेखरार है, न हाव है न भाव है, न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि ग्रंथ सेव है, सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि विशेखिये, बेअंत बेअंत बेअंत को ग्रंथ पाठ पेखिये। अगाध आद देव की अनाद बात मानिए, न जात बात मंत्र मित्र सत्र सने जा।

रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाद वरख सो धर्म करम प्रवीन जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद बुरगा पार हस्त गेट बिखै बसे सब ठौर मै निर्धार जात बात न दात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रमे जय चक्र

तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के नाधीन सर्व सबद बतार के दर्जा निये जह जोत शेष नाम सहंस फन नह नेत पूरन होत सोध सोध हटे सफ़ सुर विरोध दानव सर्व गाय गाय हटे गंधर्व।

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूम का जले थले महे जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे गई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता।

कहाँ रंग राजा कवन हरक सोग है कवन गोरु की रागी कवन कहो तत् मोह तवन दोहरा। कवन रिष्ट को पुष्ट है कहाँ श्रेष्ठ को विचार कवन शिष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश कहाँ चिदन की चेष्टा।

दुष्ट प्रजारण सृष्टुपारण शुद्ध मते फणि अर्फंकारण बाघ बकारण सस्त प्रहारण साज मते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलं जय जय होशी मैखा सुर मर्दन भूमा काश पताल जनं चाचर चमकारं जिच्छुर हारं धूम धुम कारण द्रप मथे दाढ़ विव्रतंते जोग जयंते मरुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य

अष्टाठ प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्रगते केसरी प्रवाह सुध सन्ना है अगमथा है एक वृते जय जय हो सी मखा सुरवर्धन आद कुमार गाध वृते स्वर्ण अर्मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमार अधम उधारे नरक निवार याद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नरमोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन पाए पताल आकाशन ले संकटी निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकार खण तुंद तवे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती याद अनाथ कादछे संतता समर्पण तर्क वितर्कण तवत प्रतापन जपत जीवे जय जय होसी शास्त्र प्रकरखण आद अनिल गाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे।

बाजे ब्रह्म भाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल बिख भाजे सुख उपराजे मधुरंग दुर्जन दल दज्जे मंतन रिज्जे सब न भज्जे रूह रणंग जय जय हो सी मैं खा सुमर्दन चंड चक्रदन आदि गुरंग चाचरी व्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष रोधन क्रूर विते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुन संजक विधुंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सी मैं खा सुरमर्दन आदि जुगाद अगाध गते खत्रियान खतंगी अभ अभंगी आद अनंगी अगाध गते वृड लाच बिहंडन ज छुर दंडन तेज प्रचंडन आदि वृते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मैं खास मर्दन विश्व विधुन संसृष्ट करे दामनी प्रकाश योन्तरना से ज्योत प्रकाश अतुल बले दान वीव्र करखण सरवर वरखण दुष्ट विथर खण विदल तले अष्टायद वाहन बोल निवाहन संत वनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मैं खास मर्दन आद अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रवच्छन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्धल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मैं खास मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्व कहीली जोत जतीली धुंध मते अष्टायद जमकण स

रवि बरखण दुर्जन धरखण अतुल अमरखण धरम धुजे धूमराज विधुन संसुणत चुन संसुंभन पादन सुंभ मथे जय जय होशि मैघासुर मर्दन आद नीलगाद कथे।

अदुरंत दुख दुख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत। कई उच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सेवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभु।

जेह जात पात नहीं भेद भ्रम जेह रंग रूप नहीं एक धर्म जेह सतर मित्र दो एक सार अच्छे स्वरूप अबचल अपार जानी न जाए जेह रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भे कहे नाम तास है कवन जात जेह सतर मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जेह चक्र चयन नहीं रंग रूप जेह खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग बिरहद सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंछिज तेज अनभिजताक जल थल महीप बंतन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख दहता उतार कई कोट इंद्र जह पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जह नेत नेत निस

दीनन की व्रतपाल करे निज संतु बालक नीवन गारे पछ पशु नग नाग नराध सर्व समय सबको प्रतपार पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत नहारे दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के बल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड बहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पदमा पद भेद कते भेद उचारे रोज ही रात बिलोकित राज रोग रुहान की रोज नटार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहम वेवना भेव रखियो भ्रम से भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेव थके कर हाथ नहाए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद से किन श्री पदमा पद पाए आद अनंत अगाध अद्वैत सो भूत भवेख भवान भय है अंत विहीन अनात्म अबाधाक अदोख छिद्र छह लोकन के करता हरता जल में थल में भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह छह जान को दे दे जान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरे सुध सुंदर श्री पदमा पतल है रोगंते और सोगंते जल जोगंते बोभांत बचावे शत्रु अनेक चलावत खावत ऊतन एक न लांकन पावे राखत है अपनो कर दे कर पाप संभोहन भेट न पावे और की बात कहा कहे तो सौ सो पेट ही के पट बीच बचावे जाच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम आकाश पताल रसादर जाच भुजंग सब सिर न्यावे पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुम नारग से सब हूँ मिल गायो वेद कतेब न वेद लखयो सब हार भरे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब पचहारे भेद न पाए सक्यो अनभेद को खेद तह अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे आद अनाद अगाद अभेगद वेख जप्यो तिन्हि कुलतारे तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिर कर भेष तबोधन के धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुखकारे दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया और विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हो के मान है ज्ञान हो के ज्ञात महाबुद्ध ता के दाता देव काल हों के काल महाकाल हों के काल है पूर्वी न पार बावे हिंगुला हिमाल ध्यावे गोर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है जो कि जोग साथ पौन साधना की तेक बांधे अरब के अरबी अराधे तेरे नाम है परा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है मरहट्टा मंगेली तेरी मान सो तपस्या कर देड़ वैद्य लंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंग वाली दिल्ली के दल वाली तेरी आज्ञा में चलत है रोह के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले बाप पुंज को मलत है गोखा गो न गाव जीन मचीन के शीस न्यावे देवते देहाय दुख देह के दलत है जिन्हें दोहे ध्यायो तीन पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल से फलत है देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहु पे न दीन साध दीन कहियत है
पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे बहु जात ताहे चिड़ी की चिंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है किते सस रासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है करते है विचार पैना पूरा।

सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाव हर जन के वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै तृप्तास है।

चरण को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप

करी हो रक्षा। राख लेहो मोहे राखन हारी, साहिब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा।

काहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेच्छ करो ऋण गाता जे अस धुजताओ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिय है ताकि काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध गर्मो सब होई दुष्ट छा चय सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा।

आखे लख करोड़ सच्चे सिफतां सच्चे सिफजोर सची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कदर सच्चे पातशाह नानक सच त्याय सच जो मर्ज मैं सो कचन कचमर।

अंड जेर जित पूजा काली सित जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाए कै संभाले सबना जिन करता करना की है चिंता बिकरणीता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दी